0: मान रहा हूँ।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगा। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: गेट लॉस्ट।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल मेरे साथ आप ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ अब थोड़ी देर में आनंद लेंगे आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: सर, प्रीति मित्तल, गंगापुर सिटी से।
0: प्रीति मित्तल जी गंगापुर सिटी से, बताएं प्रीति जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: इश्क दे फनियर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं प्रीति जी आपको, आपकी फरमाइश। तो रेडियो डीएस में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: मैं राजेश मीणा बोल रहा हूँ।
2: राजेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं
3: जी? मैं अभी तो बैंगलोर में हूँ, वैसे छोटी उदय का हूँ रहने वाला।
2: जी राजेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: वो गाना है दिल परदेसी हो गया मूवी का है, मेरा सोना सजन घर आया।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं राजेश जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बुद्ध धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: सलमान कबूल है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मेरा, छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: छेड़ मिलन के गीत फिल्म शेष नाग से सुनवा देंगे।
1: बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा गाना है सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में सुन के धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भदरवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से।
0: जी बताएं
1: और
0: पुरुषोत्तम जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक ठाक हैं, बैठे हैं घर में। इधर
0: जी
1: ये मोहम्मद हारून जी हमारे दोस्त, तो उन्होंने बोला आपका नंबर दिया, बोला इनको कॉल करो, वो कॉल जल्दी लग जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया सर आपने। बताएं कौन सा गाना सुना सकता हूँ मैं आपको?
1: गाना सुनना चाहते हैं, मेरा साया फिल्म का गीत है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS। रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
3: हेलो,
4: गुड मॉर्निंग सर।
3: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं।
4: सविता गुजर।
3: सविता गुजर,
4: हाँ।
3: सविता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर से।
3: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपने प्रेम को।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का ये गाना। रेडियो DS में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताएं।
2: अनिल मीना।
1: अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: आदर्श नगर गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: ब्लैंक वेज प्यार की।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: कसर ताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
0: नाम बताएं।
2: जी मैं सुनीता बोल रही हूँ।
0: सुनीता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
0: सुनीता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते रेडियो डीएस से?
2: तेरे बिन जिंदगी का गुजारा नहीं होना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सुनीता जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कौन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
0: वेरी गुड।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: हंडीराम गुजर राम बचा से।
1: हंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: वो गाना मन तेरा तेरा याद।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी।
2: फोन लगाया है।
3: कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाए, हम आपके यहाँ कैसी स्थिति है बारिश की और मौसम?
3: अच्छा चल रहा है सर, मौसम भी ठीक चल रहा है और तापमान भी अच्छा है। बताएं कौन

0: सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पर?
1: आज सर आपसे गुजारिश है, अब फिल्म का नाम तो शायद से मेमा का लग रहा है गाना, ऐसी सुबह ना आए आए ना ऐसी शाम।
0: बिल्कुल सुना सर आपकी समय।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका?
0: मोहसिन खान।
1: मोहसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: आखिर तुम्हें आना है।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रंगापुर सिटी।
0: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: वो रहने वाली महलों की।

0: जी नाम बताएं।
1: शहनाज।
0: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश के सॉन्ग। रेडियो डीएस में कुल के धन्यवाद।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:54 का। इस वक्त आप मेरे सर्टून का 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, हमारी कॉल कीजिए और आप अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर,
1: अमित सैनी, गंगा
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रसिद्धि,
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आंसू की तेलगी साजन की मत बुलाइए।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: दिव्या बोल रहा
1: हूं। कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चंद सितारे की कर दे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश रहेगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो टी से।
1: फिल्म का नाम है कर्म और गाने के बोल है समय तू धीरे धीरे चल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। कहता हूँ रेडियो टी एस में सुन के बुलबुल।

0: सच में बहुत खुश हूँ।
1: अच्छा,
0: चाहती हूँ दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाए, वक्त ठहर जाए।
1: वक्त कभी नहीं ठहरता,
0: लेकिन धीरे धीरे तो चल सकता है।
1: सच

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नाम बाबू खान है।
0: बाबूलाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे कितना प्यार है तुमसे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नवापुर सिटी।
0: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बेरिंग।

0: सर नाम बताएं।
1: अंकित।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कब्जे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का हिस्सा।
2: चाहिए तेरी प्रीत में निभा जाऊंगा, देख बावड़ा बनागी मन लिखे।

0: नाम बताएं सर।
1: रफीक खान, लोगो मस्जिद के पीछे से।
0: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ये धोखे प्यार के धोखे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.4।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: रसूल खान साहब।
1: रसूल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सेवा से कर रहा हूँ सर।
1: सेवा शारुली से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: कुर्बान फिल्म का गाना है, तू जब मुझको पुकारे मैं दौड़िया हूँ नदिया किनारे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो जी, नाम बताएं सर।
1: मेरा नाम लतीफ अहमद है।
0: लतीफ मोहम्मद रैना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मिस्टर
0: जम्मू कश्मीर से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इंडिया,
0: सर आपकी आवाज बिल्कुल कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: मिस्टर इंडिया फिल्म का
0: कौन सा गाना है?
1: कोई भी
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम विष्णु कुमार है।
0: विष्णु जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर देव कॉलोनी मिर्जापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर हमें गाना सुनना है इलू इलू वाला।
0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर। एक

0: हेलो हेलो
1: हेलो जी सर, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: विवेक,
0: विवेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जरूरी था।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो, हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: शिवानी मीना,
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? सवाई माधव।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रोइना।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: की रह गया सी, एही बस जो तमाशा करन आ गया। चला जाए तो चला जाए।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हावल मां नदिया के किनारे।

0: कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: यार
0: सर थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी।
1: यार तेरा सुपरस्टार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।

0: रास्ता है तेरे डॉगी
1: यूं मैं नशे वाला बिस्कुट हेलो एक्साइटेड मैं एडा हेलो हां जी नाम क्या है आपका मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर रहा है एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर कहां से बात कर रहे हो
2: आदर्श नगर में अपनी सिटी
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी
2: तेरी कोठी मैं बनवा दी
1: ओके मैं ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो जी, नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो
0: जी? नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका? ननंद मेरी सोने की।
0: हेलो

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती,
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो,
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ अपा नूं।
1: उह तां करना पऊगा जी, कुछ हुंदे सदा बहार, जिहड़े खड़ गए तां खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जांदे आ।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 के। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और आपने भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बोली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.

ना सानू दारू चढ़े ना ताप चढ़ते अख लड़ती नी ओदा रोज लड़ते खाधी सपनी बिना ना घरों निकले ते सप कड्डे बिना कित्थे घरे वड़दे।

0: गुड आफ्टरनून दोस्त, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टून 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अब आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
0: दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है। आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:10 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर अब 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है

0: निजर मत लगाओ ने बाता करनी है तो पणगट माते आओ।
1: अच्छा पानी लेवण जाओ हो?
0: अरे खाई भोली बाता करो, इतरो मोटो मटको दिखे कोनी कहीं।
1: मटका ने कुण देख के सा, निजर तो थाने रूप में अटकी है।
0: ओहो

0: आपरी सुंदरता तो मने मोहित कर दियो, मन करे थन देखतो ही जाऊं।
1: ओहो, क्यों मने लाजा मारो हो?
0: अरे भगवान आपने बनाया इतना सुंदर है, इनमें लाज री काई बात? सुंदर चीज री तारीफ तो करनी पड़े सा।
1: वाह, अबे तारीफ मत करो ज्यादा, चलो सीधा सीधा।

0: अरे गड़लो तो भर लीजो, आओ थोड़ी बाता करना। कितनी ठंडी ठंडी छाया है।
1: नहीं सा नहीं, आ बैठो, मैं थाने पानी भर लाऊं।
0: अरे दो मिनट तो बैठो, यूं कहीं जाओ।
1: हाँ बोलो, कहीं बाता करनी है।

0: बात तो सुन लो।
1: हाँ बोलो।
0: पाचा कद मिलो लाप।
1: मैं तो रोज आऊँ पानी लेवण ने। मिलनो रे तो आ जाया करो रोज पणगट माते।

0: तो सुबह हो चुका 4:29 का इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगा पर सिटी का दरका मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, थोड़ी ही देर में लेके आ रही हूँ।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: साबिर है, दशहरा बाजार से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कुछ तुम्हें और भी आता है सताने के सिवा।
0: कुछ तुम्हें और भी आता है सताने के
1: सिवा।
0: सताने के सिवा,
1: सताने के सिवा।
0: हाँ सताने ना।

0: नमस्कार बहन जी।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है संतोष और गाने के बोल हैं यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: वेलकम सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: आरणी दीदी सादर नमस्कार।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको और रेडियो डीएस परिवार को, सभी श्रोताओं को सावन सोमवार और नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद सर। हाँ जी सर।
1: दीदी आपके यहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है?
2: हाँ सर
1: जी। आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है शेष नाग।
2: गाने के बोल सर।
1: छेड़ मिलन के गीत रे मितवा।
2: छेड़ मिलन के गीत
1: जी।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्ते सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अक्षिता है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जी गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: आज दिन चढ़िया।
1: आज दिन चढ़िया,

0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं देखूं तेरी फोटो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: ज्योति।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: लखनऊ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: है जरूरी।
1: कौन सा?
0: जरूरी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना?

हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके, सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: नफरत सी हूँ चस्का पै गया पीने दा जड़ ला के बुलानू चट दे वे ओ काम है यार कमीने दा।
1: दारू सारे पीते हैं, हम थोड़ी ज्यादा पीते हैं।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: रेडियो
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: रेडियो डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: और शहीद शेर के फैन काफी एक्साइटेड हो रहे
1: हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद भी थी और हाल फिलहाल खबरों के मुताबिक दोनों ने ब्रेकअप कर लिया।
2: मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
3: लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

0: जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, तू हर रोज मरे मैं जिस तरह मरती हूँ।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: भाई 5 साल से तू अमेरिका में रह रहा है और वो यहाँ
1: अभी भी सिंगल है।
0: पीली छतरी आज भी बहुत मिस करते हैं यार। चलना है दोबारा मिलके वो कॉलेज की यादें ताजा करते हैं।

0: जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम मुझसे शादी करेगी?
1: हाँ।
0: प्रॉमिस?
1: प्रॉमिस।
0: तो फिर मैं अभी आया।
1: उफ़ो, ये फिर कहाँ चला गया?
0: तो फिर साइन कर इस पे।

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ
1: याद है ना,
0: तुमने प्रॉमिस किया था।
2: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।